नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोहबद कियो।

अनित सुनित है, अजात है अजाद है, चरपण छंद प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंताउ, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाताउ, सर्वं हर्ता सर्वं कर्ताउ, सर्वं प्राणु सर्वं त्राणु, सर्वं कर्मु सर्वं धर्मु, सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता, ऋषाबल छंद प्रसाद, नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते, परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न साक श्रीक मित्र अमीक सदैव प्रभा अजा है भगवती छंद प्रसाद, के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है, मैं सुर सलाम मैं समसल कलाम है, के साहब दिमागे के सुर चलागे, के काबल करीम है, के राज कर रहीम है, के रोजी दहंद है, के राज कर हिंद है, करीमल कमाल है, कुछ नु जमाल है, गरीबल खराज है, गरीबल नवाज है, हरि फल सकन है, असल प्रकान है, कलंक प्रणास है, समस्तल निवास है, गंजल गनीम है, जाय कर रहीम है, समस्तल जबाह है, के साहब करा है, के नरक प्रणास है, बहस्त निवास है, के सर्वल गवन है, मिश्र रवन है, तमामल तजी मैं समस्तल अजीज है, परम परमी से समस्तल अदीस है, अदेसल लेख है, मिश्र भेख है, जीमिल जमा है, अमिकल मा है, करी मुल्क माल है, के जोरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मित्तो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के मित्तो विभूत है, के मित्तो उपसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के मित्तो भंग है, मद पार छंद प्रसाद, मोन मन प्रणाम, गौन गर्म दाम अरबर गंज हर नर प्रभंज, आन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर खंड बरनर मंड पहुनास, मुन मन प्रकाश, गौन गण प्रणाम, जल थल मदाम, अंश जंग आसन भंग उपमा पार गात्म उदार, जल थल महन मंड दिस्विस भंड, जल थल महंत दिस्विस व्यमत, अन पहुनास त्रितता त्रास, आदिन बाहु एक सदा हो, ओंकार आदि कथनी नाद, खरखंड ख्याल गुर बरकार, कर कर प्रणाम चित चरणाम, अंश जे अंगाद अच जे अंचंज गात, अन छेज गात, अनजेज न बात, अन चंज गात, रंज बात, अन ठट भंडार, अन ठट पार, आडीठ धर्म आत टीठ कर्म, अन ब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद ता प्रसाद, करणालय है, अरकालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व अबारण है, त्रित के धन है, जग के कर्ण है, मन मान है, जग जन है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, बेस्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खलखंड से है, पर ते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, थपा थप है, अकृता कृता अमृता मृता है, अमृता मृता करुणा कृता है, अकृता कृता तरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृता मृता मृता है, अजबा कृता मृता मृता है, नर नायक है, खलकायक है, बेस्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पावपंजन है, अरगंजन है, रिपदापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंदे, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सिंह ताम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धि, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलहकर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्र नादन विभूते, अलंकर रूपे अलंकर अलंके, नमो आसासी, नमो बांक बंके, अपंगी सुपे अनंगी, नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे, एक अक्षरी छंद अजाय अलाय अपाय अभय अपू अजू, अनास अकाश गंज पंज लख पख, अकाल दयाल अलेख भेख, अनाम कम गाह टाह, नाथ परमाथे अजो नियमोनी, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्म परम गंजे लिखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे, अगंजल नामे समस्तल निवासे,
निरकामं विभूते स्मृतसर स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं विभूते सदा सचदानंद स्तन प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सजियं प्रभु शुभं सर्वदा सर्वयुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते

प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही जसवी पै प्रसाद सोइये स्थापक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रियो घर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते एक रति बने कृति के माते मतंग जर जर संग अनुपतंग सरंग सवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पवन के गौर को जात निवारे भारी भजन के भूपली बेद न्यावत शीस न जात बचारे एते भय तू कह भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत प्रै सब देश दसान को बाजत झोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ बिजानक सुंदर हिंसत ही हर राज हजारे भूत भविख भवान की भूपत कौन गण नहीं जात बचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेखा है वेद पुराण देव पुराण जमीन जबान सबान की पिखाए पवन आहार जति जतार सब सुबचार हजार देखा श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखा है शुद्ध सुपाहा दुरंत वास सासना दुर्जान धलेंगे भारी गमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगन बान मलेंगे श्री पाद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान दान चलेंगे वीर पार बड़े बिरे आर चार हसार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मुआसन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहेब श्री साहब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जै धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाद पौ जौन तरलोक राज करेंगे कोट इशनान गजादक दान अनेक स्वम प्रसाद बरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पद अंत फसे जम्फास पर रहेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पागु ते नर फेरना देह तरंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त अन्न गायो नाथ प्रियो लिए सा समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम की उतने ही प्रपायो काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर काहू ले लेंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अबाची दिशा मह काहू पछाको शीस नवायो कुब तानक पूजत है पास कोमर तानक पूजन तायो कूर क्रिया उड़ जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उड़ जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बाच बेनती चाव पाई अमरी करो हादर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब मुकावो आप हादर मोह बचाव सुखी बसाई मोरो परिवारा सेवक सिख सबाई करतारा मोर छान करदा करिया सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद मुझे बरिया मरण काल का त्रास न मरिया
ਊਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੀ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋ ਜੋ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰੱਖ ਲੇ ਹੋ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦਸਤਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਾਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਮ ਤਰੰਗ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰੰਗ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ ਆਤਮਾਸਾ

सहाय दुष्ट दुख ते लिह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छह करता। श्री अस्तोज जा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सब व्यापत कोई अड़ल।

जो जाकी एक बार जाओ पाई को कह जाओ पाई। संबत 17 सहसपुण जाए अर्ध सहसपुण तीन कह जाए। भाद्रव सुधी अष्टमी रारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने। ओ सिमरत।

जग जग फेरवटाइए ज्ञानी बुझेताहि। साज गुरा संतो का धर्म ग्रथवाओ, त्रेतर जत का जोर ग्रथवाओ।

हम शरण प्रभाए राम राजे। हम भूल बिगाड़ा दिन सरात, हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडया,